0: भी क्या चेंज करवा
1: दें।
0: फिफ्टी नाइन का भी क्या चेंज करवा
1: दें। फिफ्टी नाइन